0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब के अमेरिकन से दिक्कत करता या पंजाब से दुआ से करता हम सफर साझा फरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दिया ताजा तरीन जानकारियां ना लबरेज महकम के सौगात वंडदा साझा फरसा
1: सोमवार तक शुक्रवार 5:30 AM पे सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस डे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नु 647-835-5294
4: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहेबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नु बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: टीका टिप्पणी होवेगी, चलंत मुद्दियां ते मसलियां ते
1: तिरछी नजर रवेगी, कनेडा ते दुनिया दी सियासत ते
0: छह पर लगेगी नवे पुराने गीता दी
1: बातां होणगियां सभ्याचार ते अमीर विरसे दियां।
0: सुनना जरूर लाइव शो विद शमी पठल 5:30 AM ते सोमवार तो शुक्रवार।
1: बिजनेस दी प्रमोशन ली आज ही कॉल करो 416-917-7763 ते 416-917-7763।

0: रात आ मैं छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेड़े करदे ने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरी जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: Nobel Fresh Foods शहर विच इको रंगा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच Nobel Fresh Food फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल अले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा Nobel Fresh Foods 2945 Sandalwood Parkway East दूसरी लोकेशन 20 Gillingham Drive in Brampton फोन 289-801-0566 Nobel Fresh Foods
3: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਂਬੋ ਪਲਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $99 ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-365-2340।
4: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

मैं तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू। तुम दिल की धड़कन और मेरी सदा है तू, मेरी पहली और आखिरी वफा है तू। चाहा है तुझे, चाहा है तुझे, चाह से भी बढ़कर मेरी चाहत और चाहत की मेरी जान इंतहा है तू। पंजाबी विरसा वैद द वन एंड ओनली मैन सिंगर जी दे। छोड़ दिया उनको जे कहकर तू बेवफा नहीं, छोड़ दिया उनको कि वो बेवफा नहीं। बैठे थे तनहा में अकेले तो सोचा, ओ मेरी जान आपने तो वफा भी नहीं की।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और visit insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. Tusi cheap flight tickets Nepal de vichu, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar de route options suno chahide ne. Jan tusi visa services Nepal de vichu, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection over.
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको दौरा पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा दाल चावल नाले सब्जी ते दूध घ्यो सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो न सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
9: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे पीओ च जट पढ़ दा विमला विलेज ला विलेज हवे मला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनो दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवी सब इथो ही लवांगे। एना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीने च करनी है, वो भी बिना किसी ब्याज दे। होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करेंगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828 905-450-2828
1: This is AM 530.

0: भी धीरे धीरे से जिंदगी में आना, धीरे धीरे से कहा तो होना, धीरे धीरे से दिल को चलाना भी छेती देने नहीं आ सकता बंदा जिंदगी से, कोई नुकसान हो सकता। रफ्तार घट करने की गल कर रहे हैं कि स्पीड घट रखो, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चलाना। ग्रांट कहते छेती छेती आ जाए, बाकी काम छेती छेती सारे काम काम। अच्छा बंदा कहना छेती छेती ब्याह हो जाए, छेती बच्चे हो जाए, छेती वह बड़े हो जाए, छेती यूनिवर्सिटी चले जाए, छेती ग्रांट आ जाए, छेती अप्लाई कर दिए, एक चीज़ है जो कहना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।
1: ऐसा है वैसे, लाइक आज अगर किसी ने अप्लाई करा है हमारे साथ,
0: थोड़े तक कल खा जाते होने हो,
1: हमें हमें तीन दिन में सर हमारा क्या स्टेटस है,
0: तेरा क्या है, इतनी छेता पीजा नहीं होता जिन्नी छेती बंदा वीजा भरदा, जब तो वीजा भी अप्लाई किया फिर भी बंदा कहता छेती भाई आया नहीं अजे कुछ, है ना।
1: आप पहले बोलते थे 30 से 90 डेज लगेंगे,
0: यानी 30 से 90 दिन लगने हैं,
1: लगने हैं जी,
0: लगते हैं।
1: ये सीबा लोन की तरह नहीं, गवर्नमेंट पहले पैसे फेंकेगी बाद में बोली अरे गलती से भेज दी वापस।
0: तुम यार गीत ला के रख लो फोन पे, धीरे धीरे से हौली हौली फोन करना। सो लो जी भाई, भाई मेन वड्डी गल यह है कि बहुत सारे लोग ने जिहड़े उन्होंने ये लगता हों कि यार इन्ना सौखा नहीं है कनेडा च, खास करके जे आप घर पर भी कोई लोन लेना हो, यार गड्डी का लोन नहीं इन्ना सौखा तो मिलता भाई जी, जिवें तुसीं दस रहे हो गड्डी का लोन लैण लई भी ओह 100 डाकूमेंट मंगदे
1: आ। गड्डी का लोन आपको गवर्नमेंट देती है?
0: नहीं दिंदी,
1: तो बस फिर बात ही नहीं है ना। जब गवर्नमेंट $1 बिलियन फीफा वर्ल्ड कप में लगा देती है।
0: अच्छा 1 बिलियन लाया उन्होंने,
1: 1 बिलियन जॉब रिपोर्ट ज्यादा क्यों आई है इस बार?
0: $1 मिलियन फीफा थे,
1: जॉब रिपोर्ट ऊपर क्यों आई है इस बार? इन्फ्लेशन है, अगले 2 महीने में देखना कहां जाएंगी जॉब रिपोर्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा फेंका तिजोरी से, बड़ी बड़ी कंपनी स्टेडियम्स को दिया, उन्होंने एम्प्लॉय करा, जॉब नंबर्स अप गए। ओके सो दैट्स अ डिफरेंट साइड। जब गवर्नमेंट लाइक अब गवर्नमेंट ने 100 मिलियन लगाया है, 100 मिलियन किस लिए लगाया है? जो देश के बाहर जो और कंट्रीज हैं उनमें छोटे बच्चे फुटबॉल खेल के फीफा में एडमिशन ले पाए। 100 मिलियन की फंडिंग गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा की वेबसाइट पे जाए और चेक करें। ओके जब गवर्नमेंट इन चीजों में पैसा लगा सकती है तो गवर्नमेंट एडुकेशन भी लगाती है सेम वे में, कोई कैच नहीं है इसके अंदर। और इसमें लाइक अगर आप PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपकी इनकम कम है 2024 के नोटिस ऑफ असेसमेंट पे, आप ओंटारियो में किसी भी सिटी में रहते चाहे नाइग्रा, हैमिल्टन, बैरी, नो एज लिमिट।
0: कई बार बंदे ने ग्रांट भी ले ली, लोन भी ला लिया, बाद च ग्रांट तो वापस करनी नहीं,
1: बिल्कुल जी,
0: लोन 1.5 साल बाद वापस करना,
1: उन्होंने लोन डेफर करा लिया 1 साल
0: कर देंगे ने,
1: हाँ गवर्नमेंट है।
0: अच्छा
1: 2 साल डेफर करा लिया, 3 साल डेफर करा लिया,
0: अच्छा
1: मजबूरी समझती गवर्नमेंट।
0: हाँ 3 साल कुछ नहीं देना है तुम्हें,
1: कुछ भी नहीं, लोन 3 साल के बाद स्टार्ट हुआ होगा, फिर
0: आई भी हो जाता है,
1: हो जाता है, गवर्नमेंट है
0: कर दें दिया, उन्होंने पता यार बंदा हाँ जो उन्होंने मजबूरी बाकी जाना पै गया, कहते और भी जाना पै गया,
1: मजबूरी वाली बातें तो फिर समझते हैं बैंक थोड़ी जो उठा के ले जाएगा।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: है ना, तो वो चीज है, तो इसलिए आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, तो इसमें मेरा नहीं आपका नुकसान है, हमारा तो एक छोटी सी फीस है, आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। तो इसमें लाइक 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें जिसका आधा पैसा आज की डेट में नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है।
0: हाँ जी लोन भी जो हम जो बंद को कोई मौके पर अगला कहना यार मेरे को हम 4 पैसे है ठीक है कम सही हो गया है ना, 3 साल बाद 4 साल बाद यार मैं कोई होर कोई लोन लेना कुछ होर करना मैं मॉर्गेज लेनी कुछ भी करना भी मैं पे ऑफ कर देना, मैं गड्डिया का कई बार ओपन लोन कह देना
1: ओपन है,
0: पर ये ओपन है,
1: बिल्कुल ओपन है, मैंने अपना खुद का 3 साल में पे कर दिया था,
0: जो तो मर्जी पे कर दो,
1: राइट 3 साल में पैसे इकट्ठे
0: हो गए, 20,000 चाहे 20,000 की किस्त बना लो चाहे 20,000 तुम वन टाइम ही पे करो,
1: यस सही में,
0: कोई पेनल्टी नहीं है,
1: पेनल्टी नहीं है इस पे।
0: अच्छा
1: गवर्नमेंट
0: कोई तो नहीं, जब आप मॉर्गेज पहला कहने के पहला पे करनी चाहते हो जा कटानी चाहते हैं कुछ गई है 3 महीने का इंटरेस्ट रेट पैजू या कुछ, यह कुछ नहीं है
1: इसमें, नहीं इसमें एक और बड़ी चीज है बताऊं, अगर हमें डीप जाना है।
0: हाँ थोड़ा डीप चलो,
1: हाँ चलो बड़ा थोड़ा सा टेक्निकल चीज पे चलते हैं।
0: हाँ चलो,
1: मेरे घर की किस्त है $2,500,
0: हाँ
1: जब मैंने घर लिया था तो उसमें से $1,500 ब्याज था, 1,200 प्रिंसिपल था,
0: अच्छा
1: समझे 2500 किस में से
0: 1000 प्रिंसिपल उतर था 1500 ब्याज ही जाता था।
1: अब आप इधर आ जाओ इस वाले लोन पे,
0: अच्छा
1: 17,000 का लोन है, 162 की किस्त है, $22 इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा इंटरेस्ट में जाएगा पहले,
0: प्रिंसिपल
1: जैसे मॉर्गेज में होता है सारा पैसा इंटरेस्ट में जाता है,
0: हां जाते
1: पहले शुरू में इंटरेस्ट में जाता प्रिंसिपल में कम, यहां पे डे 1 से प्रिंसिपल में ही ज्यादा पैसा जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है और फ्लैट चलता है, मतलब $22 ब्याज हर महीने का एवरी मंथ सेम फॉर 10 इयर्स। यहाँ पे कैसा है, पहले चूस लेते हैं मोर्गेज वाले बैंक्स पूरे बंदे को 10-15 साल, फिर बाद में प्रिंसिपल में ज्यादा पैसा जाता है, राइट। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, आप लाइक स्किल हासिल कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट सीखें, 30 से 100,000 की फंडिंग हासिल करें, आधा पैसा तो नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स है, नो एज लिमिट, नो क्रेडिट चेक, कॉल करें, हमारी फीस काम होने के बाद कितनी है जी, नो परसेंटेज, नो कमीशन, नो कैश,
0: $199
1: मुझे आज 6 ट्रैक आए हैं, सबने 200 भेजे हैं 199 की जगह।
0: अच्छा,
1: $1 लोग ज्यादा दे देते, खुद से ज्यादा दे देते हैं, हम मांगते नहीं है,
0: वो कहते हैं बद लो जी, तुम देखो बद कितना देंगे, $200 जरा। अच्छा, कहते 6 इंट्रैक्ट आ गए, बढ़िया
1: जो कहते शर्म आती, 199 देते सर, 200 ले जाओ।
0: सो भाजी हमने तुम कॉल कर लो, इन्हों की टीम है जी वो तत्पर लगी हुई है, क्योंकि जे मैं तुम दस कि कोर्स है जो भरी जा रहे हैं, जो इन्होंने कोर्स भर गए तुम कहना भाई जी एडवर्टाइजमेंट करते तो है, तो अलग अलग थावान इन्होंने चलती है, पर भी सू तो कहते हम थोड़ी सीट ही है नहीं, इन्होंने कहना कोई कोर्स
1: चार सौ सैंती
0: 274 3174 4 3174 3174 ते गलबात कर सकते हो, जुड़े हो रेडियो प्रोग्राम सारे।

0: ना बाबा ये देखो को तो कड़कड़ लाया जे समान है ना जादू तो थोड़े को जादू जादू करी जाने जादू तो थोड़े को जादू तुम दसो मैनू बहुत सारे जी फैमिली दस वे प्रोग्राम सुन रही हो बहुत सारे लोग आ जोड़े वह होर भी इस फील्ड हो जी पर असी थोड़े वरते हैं वा
1: बिल्कुल जी
0: साढ़े जोड़े लिसनर ने उन्होंने थोड़े वरते
1: बिल्कुल जी
0: थोनू ही क्यों चूज किया जाए
1: क्योंकि हमारी फीस अपफ्रंट नहीं है
0: ओके एक तो फीस पहला कुछ नहीं लेंगे
1: जी
0: कोई परसेंटेज नहीं लेंगे
1: परसेंटेज लेते ही नहीं है फीस भी पहले नहीं लेते
0: फीस भी बाद लेनी है
1: मतलब लोग हमारी फीस मार जाते हैं सही कह रहा हूँ नोट नहीं है
0: हाँ।
1: अभी भी लास्ट वीक हमारे 5 क्लाइंट फोन नहीं उठा रहे
0: बड़ी गल
1: बट आई एम हैप्पी वो खुश है हम खुश है इट्स फाइन
0: ओके
1: काम होने के बाद उन्होंने पैसे नहीं दिए हमारे इट्स फाइन
0: क्योंकि पैसे आ गए
1: उनको पैसे आ गए उनके
0: कितने कितने
1: उनको आए हैं 30-30 से लेके 35,000 के बीच में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट
0: हो रहे होंगे
1: अभी और आने 5 महीने बाद
0: छोटे कितने देने से
1: हमारे 200 और या 400

0: हम
1: इतना खुल के होलसेल में काम तभी कर पा रहे हैं क्योंकि हम ऑनेस्टी से
0: मन मानता का तो नहीं है लगता नहीं बयान के में हो जू जा
1: रहा है अब जो अब इस टाइम पे
0: गल है कि नहीं
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर इनदी गल जी इनदे मेनू विश्वास ता करना पंदा क्योंकि मेरे एक दो मित्र हैगे सीगे
2: वो
0: मैं कह देखो ता तुसी परख के होए उन्होंने कीता उन्होंने अकाउंट च भी आ गए तो कोर्स भी कर रहे उन्होंने सच्ची का करना सी उन्होंने वो कहंदे सी असी भाई सानू अकाउंट दा एकदम मेरे ख्याल कुछ किसने लिया सीगा
1: ना
0: अकाउंटेंट दा लिया सी वो कहंदा भाई मैं कहंदा आपदा ही कर लिया करूं अकाउंटेंट दा एक दिन मेरे ख्याल उन्होंने वाइफ सीगे उन्होंने करना सीगा सो हजे दो तीन दे मैनूं लगदा आउण वाले भी हैगे हजे मेरे ख्याल उन्होंने अप्रूवल आऊं कहंदे जी आ गए सानू लेटर आ गई अप्रूवल हो गया अच्छा अप्रूवल दी लेटर किन्ने दिनां बाद आ जांदी है
1: 30 से 90 डेज में
0: ये तो 90 दिनां च नाल ही फिर फंडिंग हो जांदी है
1: बिल्कुल जी यस अब मान के चलें इस टाइम पे कम से कम हमें 500 बंदा सुन रहा है जो हमारा एनरोल हो चुका है
0: अच्छा
1: इनकी फंडिंग गिर चुकी है
0: जिन्हें आ गई है
1: बिल्कुल हमें इस वक्त सुन रहे होंगे आराम से 500
0: डॉक्यूमेंट केड़े-केड़े चाहिए होंदे
1: डॉक्यूमेंट इसमें नोटिस ऑफ असेसमेंट हो गया बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट आपका मैरिज सर्टिफिकेट नोटिस ऑफ असेसमेंट 2024 का चाहिए फिलहाल क्योंकि अभी अकेडमी का चल रहा है 25-26 इसमें अच्छा। 24 का देखा जाता है
0: अच्छा।
1: जितनी कम इनकम है तो ही हमें कॉल करें
0: अच्छा
1: 70,000 से
0: जेड़ा अप्रूवल रेट आप जो आप 100 के बिचों लाइए भी आपका तो 50% 60% 70% 90% कितना परसेंट
1: कोई हवाबाजी नहीं है इसमें
0: सही गल है कोई नहीं कोई देखो 100% कोई भी नहीं
1: होता 98
0: पक्की गल
1: बिल्कुल
0: दिखाओ
1: आप देखो एक्सेल खुली हुई है आपके सामने जिसमें
0: 98%
1: है
0: जिन्ने बंदे ने अप्लाई तुसी
1: कीता बंदे 98 का अप्रूवल है
0: तो जेड़े दो रह गए उन्होंने कहा तो नहीं मिला
1: उसमें अब किसी के अगर तीन शादी है उनके 6 बच्चे हर भी वाइफ से अलग अलग दो तीन तीन तीन तीन बच्चे हैं तो गवर्नमेंट को वो वैल्यूएट करने में टाइम लगता है
0: वो बंदे नु आपनु वैल्यूएट करनु टाइम लगता होगा मैं जब दूसरी गलत बात है मैं जेड़े साहब ना
2: तो एक क्वेश्चन आ जाता है
0: हां
2: बंदा मेरे हवाल आपको बता पहले शादी करनी है पैनिया करनी है
0: हां जे तने शादी ते तने दे विच दो दो बच्चे तुसी बच्चियां दा पहले उनु वो देखना पड़ेगा वैल्यूएशन करनी पड़ेगी केड़े दा नौकी
1: है वही गवर्नमेंट कागज मांगती है पहले से डिवोर्स दिखाओ पहले से
2: बिल्कुल सच है एक महीने मिला सी बंदा ओदे 9 मैरिज सी
0: मैक्सिमम
1: ग्रांट हमने देखी है फैमिली ऑफ 10 8 बच्चे थे उनके उनको 135,000 आया
0: उन्होंने भी आई
1: 70,000 ग्रांट था उसमें से
0: नहीं वो ग्रांट वाले कह देना जे ग्रांट वाले ऐसे चार के चले गए उन्होंने कहना हटे मटे हो भरावा ना हो तो भला हो जाए
1: अच्छा
0: पर ये भाई तुम इन्होंने नंबर नोट कर लो इस नंबर से कॉल कर लियो 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 437-264-3175 हजे भी नागपाल साहब झाक जाते एक अद्धी बार होर कह दे नागपाल साहब दिल है मर्जी है
1: 437-264-3175
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी तुम खुश रहो आबाद रहो जिंदाबाद रहो परमात्मा तुहाडे सारयां नूं तंदुरुस्तियां बख्शे तुहाडे खजाने भरे रहन तुहाडे खजाने ताही है जे खजाने दे विच तुसीं मेहनत नाल कीती हुई कमाई भरदे रहोगे सो बहुत बहुत धन्यवाद नागपाल साहब थैंक यू वेरी मच
2: नागपाल साहब जी बहुत बहुत धन्यवाद
0: आ लो हिंदी गीत लाके फिर दिंदे आपां

0: 32, 55, 80, 93, 98।
1: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो?
2: ओ, काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते।
2: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 Bowway Drive नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।

0: CFRC.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: 053, Supermart और कैसा लेदर इको ही कंपनी का नाम
2: मैंने पता थोड़ी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोनी लगती है पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह दी क्रिटिकल इलनेस दा हो जाओ शिकार ता कौन भरेगा तुहाडे घर दी मॉर्गेज कित्थों आएगी इनकम किवें चलेगी जिंदगी दी गड्डी अगे अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ कॉल करो उमरप्रीत चावला नू जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस सुपर वीजा ट्रैवल इंश्योरेंस आरईएस

0: 416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551-416-725-2551- Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है.
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने. पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381
2: नाली. जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो. बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे. हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381.
5: दोस्तो देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नु सुनन वास्ते जां देश परदेश नु लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नु www.deshpardeshradio.com या www.deshpardeshtv.com. लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे हो तां ओ ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओदे उत्ते जाके देश परदेश टीवी नु कलेक्ट करो, उत्थे तुसी सुन भी सकदे हो, वेख भी सकदे हो 24/7.

0: ਹੈਲੋ ਏਐਮ 530 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ।
1: ਟੁਡੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-564-6444। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ, ਚਲੋ ਏਐਮ 530 ਤੋਂ।
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है, अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले।
3: इसे लिए मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है।
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो तो सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने। पेरेंट्स लिए सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लिए हुणे कॉल करो 416-453-3381 ते 416-457-3381।
2: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो। बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउंगे। हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381। 416-457-3381।